0: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर वक्त हुआ है आप ही के मन पसंदीदा गानों का प्रोग्राम संगीत माला का. और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरे यानी नीपा के साथ और मेरा साथ देने वाले हैं.
1: जी हाँ, आप ही का दोस्त और होस्ट मनीष. कैसे हैं आप? सावन के महीने में प्रॉब्लम भी, आप अपना धर्म ध्यान भी कर रहे होंगे और मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे.
0: जी हाँ मनीष जी, जब भी सावन का महीना आता है तो पता है ना, हम जब इंडिया में हुआ

0: करते थे, तो ढेरों त्योहारों का लगता है कि मेला लगा हुआ है, एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अच्छे से पूरा महीना जो है वो भरा हुआ होता है अच्छे अच्छे दिनों से। और इसमें बहुत सारे हम लोग भगवान की रिचुअल्स भी करते हैं। और देखिए आज के प्रोग्राम में हम आपको बस वैसे ही आपको फील करवाएंगे जैसे हम इंडिया में ही कहीं बैठे हो। और जैसे मनीष जी आपने कहा कि सावन का महीना, तो सावन शब्द आते ही सबसे पहले दिमाग में एक गाना आ ही जाता है।
1: क्या बात है, बिल्कुल, सावन का महीना, पवन करिश्मा,
0: यही सुना देते हैं हमारे लिसनर्स को।
1: चलिए

0: सावन का महीना पवन करे शोर, तो सावन का महीना आते ही वो दिल में एक अलग सी उमंगे जागती है कि हमें इतने सारे त्यौहार होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, घर पर भी रहकर हम काफ़ी सारे भगवान का नाम लेते हैं और शंकर भगवान का तो हमें पता ही है कि सावन का महीना हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे शिव जी को। और सावन के महीने में ढेर सारे त्यौहार आते हैं, उसमें से एक त्यौहार अभी दो दिन पहले ही गया हुआ है। और लेकिन उससे पहले मैं और एक सावन के महीने का, अब सावन के गाने के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। और मनीष जी, आपको पता है ये सावन का महीना जो होते हैं उसमें हम बोलते हैं सावन के झूले भी आते हैं, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? सावन के झूले हमेशा लगते हैं ना, तो अभी अगला जो गाना हम सुनाने वाले हैं हमारे लिसनर्स को, फिल्म का नाम था निगाहें, उसी का गाना है कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। तो कृष्ण भगवान जी और शंकर भगवान जी के साथ इसका जो रिलेशन रिलेट किया जा सकता है कि जब भी सावन का महीना आता है तो बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में आपको पता है चारों ओर हरियाली भी छाई हुई होती है, ग्रीनरी होती है, और तब झूले जो है ना, शिव जी ने पार्वती जी के लिए एक झूला बनाया था और उसके ऊपर वो बैठकर झूलती थी, और सेम कृष्ण भगवान जी ने भी झूला बनाया था और उसके ऊपर राधा जी बैठकर झूला करती थी। तो कहते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है और एक अंदर से पॉजिटिविटी आती है, और जैसे मैंने कहा कि जो अभी जो हमारे त्यौहार की शुरुआत हो जाएगी, लाइन लग जाएगी, तो वही इस सावन के महीने में हम लोगों को पॉजिटिव।
1: तो आपने नेपा जी कभी झूला झूला है सावन के महीने में?
0: सावन के महीने में तो नहीं झूला है, लेकिन बचपन में पार्क में जाया करते थे तब जरूर झूला है, लेकिन यहाँ पे तो बैकयार्ड में भी आप झूला लगा सकते हैं और झूल सकते हैं।
1: और मुझे ध्यान है, शायद आप सही कह रहे हो, जब कभी बचपन में ही हमने झूला झूला हो, तो उस समय में क्या होता है कि जब आप झूलते हैं तो जो हवा का झोंका आपके आपको आपको छूता है और वो जो फ्रेशनेस देता है, मतलब वो अलग ही माइंड जो आपका, हाँ, कि आप उड़ रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, मतलब वो जो फील होती है तो वो हम महसूस कर सकते हैं। आई थिंक हर एक कोई, हमारे श्रोता भी महसूस करते होंगे।
0: यही एक हमारे लाइफ के साथ हम जोड़ सकते हैं ना, कि जितना हम ऊपर चलते हैं और आसानी से नीचे भी आ जाते हैं, तो जो लैंडिंग होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए। जब भी आप ज़िंदगी में भी आप अपने कामयाबी हासिल कर लेते हो तो आपको ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि ऊपर इंसान बहुत टाइम तक नहीं रह सकता, उसको नीचे तो आना ही होता है।
1: चलिए दोस्तों, अगर अगली बार आप झूला झूलें तो ये दिमाग में जरूर रखिए इस बात को भी। और अभी जो हमने गाना चलाया था सावन का महीना पवन करे शोर, तो हमें सुधीर सूर्यवंशी जी ने कॉल करके कहा ये मेरे दिल के बहुत अजीज है, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग। और हम भी आपका थैंक्स करना चाहते हैं सुधीर जी, कॉल करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये आपका बहुत फेवरेट सॉन्ग है, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप सब भी अपनी फरमाइश हमें आज भेज सकते हैं 306-242-5002 पर कॉल करके। आप जो हम सॉन्ग्स आप कोई भी चाहते हैं डेडिकेट करना, बिल्कुल हम प्ले करेंगे। और लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो रक्षाबंधन का है, तो अगर आप अपनी बहनों को, कोई भी भाई या कोई बहन अपने भाइयों को अपना संदेश भेजना चाहती हैं हमारे ज़रिए, तो वो भी आप कॉल कर सकते हैं और सॉन्ग हम प्ले करेंगे आपकी इच्छा का। और जहाँ कहीं भी बैठे हैं वो डेफिनेटली रेडियो ट्यून इन करेंगे और आपकी फरमाइश को सुन पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेंड अ मैसेज, तो आप प्लीज़ जरूर कीजिए। तो क्या हम चलाएं नेक्स्ट सॉन्ग?
0: निगाहें का मोहम्मद अजीज की आवाज़ में गाया हुआ गाना, सावन के झूलों ने मुझ

सावन की बात हो रही है, देखिए हमें फरमाइश भी आने लगी है. और अगला जो गाना है मनीष जी, फिल्म आई थी जुर्माना, तो देखिए सावन की सावन जो नाम हम लोग ने लिया, तो कितने सारे गाने हैं ना इसी नाम पर. तो हमारे एक रेगुलर लिसनर है रमेश जी, वो रैले में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सावन का नाम आते ही उनके दिमाग में फिल्म आई थी जुर्माना, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थी, राखी जी थी और विनोद मेहरा जी थे. उन्हीं का लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है. तो चलिए सुनते हैं यही सूदिंग सॉन्ग फ्रॉम जुर्माना.

0: सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, क्या गाना है। और लता जी की आवाज़ में जो गाना होता है वो तो पता ही है, इतना प्यारा होता ही है। और देखिए, मैंने कहा जैसे सावन की बात की तो हमें रिक्वेस्ट भी सावन के वक्त
1: क्या बात है, वाकई में
0: तो
1: देखिए अभी तक तो हम अपने आया सावन झूम के और झूम के गा रहे हैं लोग और गुनगुना रहे हैं अपने दिलों में कि सावन के महीने में हम ले ही गए हैं लोगों को अगर देखा जाए तो। चलिए प्ले सुनाते हैं ये अगला गाना।
0: हाँ जी, अगला गाना जो है फिल्म का नाम आया था आया सावन झूम के, मोहम्मद रफी जी की और लता जी की आवाज़ में गाया हुआ, ये गाना भी सुन लेते हैं।

0: देखिए सावन में हम भी झूमने लगे हैं। सावन का महीना मैंने कहा ना मनीष जी है ही ऐसा कि जो गाने सुन के ही हम लोग इतना अच्छा सा फील कर रहे हैं। तो इंडिया में तो कितनी मज़ा आता है पता है, मंदिर में भी रोज अलग अलग झूले होते हैं भगवान के, जो हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, तो जो भी वो बलदेव जी की हवेली हो या कृष्ण भगवान जी की या श्रीनाथ जी की जो भी हवेली होती है ना, उसमें रोज़ अलग अलग उनका श्रृंगार होता है और उसके अलग से रोज़ अलग अलग से उनके श्रृंगार और जो धरावा धरते हैं उसका भी बहुत अच्छा एक मजा
1: तो
0: होता
1: यही
0: है।
1: चीज़ तो कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ मिस करते हैं कि इंडिया के कल्चर में जो त्यौहार को मनाया जाता है, जो दिखाया जाता है,
0: जी
1: दर्शाया जाता है, आनंद लिया जाता है, वो
0: जी
1: सारा जो मिठास है वो सारा वहीं मिलता है। मतलब यहाँ तो हम खाली एक रेप्लिका करते हैं या उसको एक हम नकल करने की कोशिश
0: जी
1: करते हैं,
0: जी
1: लेकिन वो चीज़ तो नहीं मिल सकती जो इंडिया के अंदर है। और वाकई में वो चीज़ बड़ी मिस होती है यहाँ पे।
0: जी
1: हाँ
0: देखिए, लेकिन हमारे लिसनर्स इतने अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अभी हमें एक मैसेज आया है ऑल द वे फ्रॉम बिसाऊ, वो मीना जी है, वो बोल रहे हैं कि मनीष जी और अनीपा जी, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सावन स्पेशल, और वो सुनना चाहती है फिल्म आई थी मंजिल, और उसी का ये जो हमेशा से हम सबको कितनी ही दफ़ा ये गाना चलाओ सबको पसंद होता ही है, लता जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है और गाने की वो है रिमझिम गिरे सावन।

0: We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstock's waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
1: Now all see ladies and see gentlemen, they all ask how and where. It's a Broadway shoe repair. It's a Broadway shoe repair.
2: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
3: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
4: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
5: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और वो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर और केवल आपकी तक हम पहुँचा पा रहे हैं संगीत माला को ICCA के सौजन्य से, यानी इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन। और आज जो हम आप तक प्रोग्राम पहुँचा रहे हैं, मैं हूँ आपका होस्ट मनीष और मेरा साथ दे रहे हैं
6: नीपा।
5: यस,
6: और देखिए मनीष जी, सावन की बात करते हैं तो आज मैं तो कहती हूँ कि पिछले तीन दिन से हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिनके हम लोग तो यहाँ पे वीकेंड के हिसाब से ही हमेशा से राखी मनाते हैं, क्योंकि जिनको जब भी वक्त मिलता है तब। और मैं पर्सनली आपको मनीष जी कहूँ तो मैं जब इंडिया में थी ना, तब मेरा भाई जब भी आता था ना तो मैं उसको राखी बांध दिया करती थी, क्योंकि हम लोग यहाँ से जब भी जाते हैं तो ऐसा कोई तय तो होता नहीं कि कब, लेकिन इन पर्सन जो राखी बांधने का जो हम लोगों को मौका मिलता है तो मैं वो कभी गवाती नहीं हूँ। और यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कि हम लोगों ने थर्सडे को राखी मनाई थी, फ्राइडे को भी, जो एक्चुअल फ्राइडे को हुआ करती है राखी, तो आज भी कई लोग आज भी मनाने वाले हैं।
5: बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ राखी का त्यौहार कोई एक स्पेशल त्यौहार नहीं है, मतलब एक डे नहीं है। आप बहन की रक्षा करने का तो कभी भी आप जिम्मा उठा सकते हैं, जब भी कमिटमेंट कर सकते हैं, तो लेकिन ये एक रिचुअल है, कल्चर है कि हम इसको एक स्पेसिफिक डे मनाते हैं। और इसके पीछे भी कई कहानियां हैं कि हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, यानी इसके अलावा भी तो बहुत सी कहानियां मौजूद हैं।
6: तो मनीष जी, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन जब मुझे अभी कल ही पता चला कि जो रक्षाबंधन, मुझे आज तक ऐसा ही था कि भाई बहन का त्यौहार होता है, लेकिन कहा जाता है कि जो राखी होती है उसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, तो वो कोई भी किसी की रक्षा के लिए, इससे लाइक रक्षा कवच बोल सकते हैं ना, कि वो हाथ पर बांधते हैं, तो जो बांधता है वो एक दूसरे से कमिटेड है कि भाई मैं कुछ भी होगा तो तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो यही है, तो ये जो पवित्र रिश्ता है भाई बहन का, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी और रिश्ता जो होगा जो इतना पवित्र होगा कि जिसमें कोई भी एक दूसरे के, मतलब भाई होता है तो बहन अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती है, और जो बड़ी बहन होती है तो वो अपने छोटे भाई के लिए हमेशा से ढाल बनकर खड़ी होती है। तो ये रक्षाबंधन की बात आते ही सबसे पहले मेरे जहन में गाना आता है, फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्ण का, और गाने के बाद मनीष जी
5: फूलो।

0: मनीष जी, हम तो गुम हो गए ना ये गाना सुनते, गाने में ही गुम हो गए.
1: बिल्कुल, मैं शायद वहीं पहुंच गया था इंडिया.
0: मैं भी पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे भैया मेरे लिए ये गाना अक्सर गाया करते थे. तो यहाँ पर बैठकर हम लोग फ्लैशबैक में चले गए ना, कि सचमुच में जब बचपन में साथ में होते हैं तो हम लोग कितनी मस्ती किया करते हैं. अगर कुछ भी चुगली खाना होता है तो भी भाई बहन एक दूसरे की चुगली खाते हैं, और फिर ब्लैकमेल भी तो कहते हैं ना कि अगर तूने कुछ किया ना तो मैं मम्मी को बोल दूंगी, अब डैडी को बोल दूंगा. और फिर
1: देखो कहते हैं ना कि दोस्त बनने से पहले अगर आपके रिश्ते घर में बन जाते हैं जैसे बहन,
0: हाँ.
1: तो ये भी कहा जाता है कि जब आप एक भाई को अपनी बहन मिल जाती है या बहन को भाई, तो एक परिवार संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है. बिकॉज उसे कहीं फिर और कुछ तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका सबसे प्यारा मित्र भी बहन या भाई होते हैं. तो जो हम अपने राज उनके साथ शेयर करते हैं, जो हमारा वो साथ देते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ बेस्ट रिलेशन आई कैन से.
0: और पता है ना, स्कूल में भी जब कोई परेशान करता है, अगर बहन छोटी हो तो वो अपने भाई को बोलेंगी, और स्कूल में भी वो बोलती ना मैं मेरे भाई को बोलती
1: हूं.
0: तो स्कूल में होते हैं तो भैया आके थोड़ी डांट डपट दे भी देते हैं. तो एक वो रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि एकदम प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपको, कि कुछ भी टेंशन नहीं है. और ये जो है ना, आज तक यहाँ पर आने के बाद भी हम यहाँ आने के बाद कुछ ज़्यादा ही हम हमारे भाई बहनों को मिस करने लगते हैं. और अभी उस उम्र में पहुँचे हैं कि जब हमारे बच्चे लड़ते हैं झगड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं फिर कब आप साथ में रह पाओगे, जितना साथ में रहने का मौका मिल रहा है आप रह लो. और देखिए, ऐसी बातें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे. और अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं. हमारे लिसनर, रेगुलर लिसनर किरण जी सुनना चाहती है, फिल्म आई थी रेशम की डोरी, और इसमें धर्मेंद्र जी के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया है. और ये फिल्म मतलब स्क्रीन पे आप देखोगे तो उनकी आंखों में सचमुच में कितना प्यार झलकता है अपनी बहन के लिए. तो सुनवा देते हैं किरण जी की फरमाइश का ये प्यारा सा गाना, रक्षाबंधन.

0: बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। क्या प्यार, वही है कि देखिए, एक कहते हैं तो एक धागा ही है, लेकिन उस एक धागे से सालों साल जिंदगी भर का हम जो नाता जोड़ लेते हैं, तो वही तो है कि हमारे जो हमारी संस्कृति में हमने कितने हर एक रिश्तों को कितना अहमियत दी हुई है कि हर रिश्तों की एक अपनी खुद खासियत होती है। तो वही भाई बहन का रिश्ते होते हैं ना, पेरेंट्स जब भी होते हैं ना तो बच्चे होने के बाद वही बोलते हैं कि देखो आज जब तक हम लोग हैं तब तक ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हारा भाई ही है या तुम्हारी बहन ही है, तो वो जो कहते हैं वैसे किया करो, है ना मनीष, ऐसा ही होता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं ऐसे ही आज की बात कर रहा था, अभी मैं स्टूडियो पे आने से पहले मैं एक जगह गया था, यानी यहाँ पे लाइफ लैब है, और वहाँ पर मैं गया, मैंने उनको बोला कि भी मुझे थोड़ा सा जल्दी कर देना कि मुझे रेडियो शो पे जाना है। तो जो हम जो नर्स थी वो इंडियन थी, तो उन्होंने बोला आप रेडियो शो करते हैं, तो उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्हें पता चला कि देखिए संगीत माला भी यहाँ पर होता है कार्यक्रम और रेडियो शो पे आता है, और हिंदी सॉन्ग्स जिसमें चलते हैं, क्योंकि वो यही बोलेंगे कि हमें यहाँ पे सॉन्ग्स ही सुनने को नहीं मिल पाते, हम तरस जाते हैं कि हिंदी सॉन्ग्स को सुनने के लिए। तो ये देखो कभी कभी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं, और उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं ट्यून इन करूँगी और आपके सॉन्ग को ज़रूर सुनूंगी।
0: हाँ, तो मुझे महेश जी यहाँ पे लगता है कि हम हमारे लिसनर्स को बता भी दें कि आप CFCR की जो है
1: ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप रेडियो पर ट्यून इन नहीं कर पाते। वैसे तो रेडियो पर भी 90.5 FM जब आप सर्च करेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी ऐप डाउनलोड करें,
0: आपके पास अगर आप
1: पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी सुन सकते हैं,
0: तो आप हर शनिवार को 11 से लेके ठीक 12:30 बजे तक CFCR 90.FM मतलब CFCR पर हमारा संगीत माला सुन सकते हैं।
1: और तो मैं अब चलाना चाहता हूँ उनकी फरमाइश का गाना, तो उनका नाम है या
0: उन्होंने जो गाना गाया, फिल्म आई थी रक्षाबंधन का, तो उसका ये जो गाना है कि रक्षाबंधन का ही गाना है, और वो ये गाना सुनना चाहती हैं आरती जी और जनीशा जी।
1: जी बिल्कुल, तो जनीशा जी थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अवर न्यू लिसनर। और आप और लिसनर्स भी हमें बनाएं इसी के साथ ये गाना चलाते हैं।
0: यहाँ पर आते हैं ना तो सबको ये लगता है कि नहीं, यहाँ पर आने के बाद हम लोग को कहाँ बॉलीवुड गाने सुनने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब नए आते हो तो आपको पता अभी चल गया है, तो आप भी यही बात सबको बताइएगा, और हमारे ये जो बॉलीवुड फिल्मी गीतों का प्रोग्राम संगीतमाला हर शनिवार को हम चलाते हैं, तो आप उसका आप एंजॉय कीजिए और अपनों तक अपना मैसेज पहुंचा दीजिए। तो चलिए सुनते हैं जनीशा जी और आरती जी की फरमाइश का ये गाना।

0: मनीष जी, आपको आपको बहन है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बहन है,
0: बड़ी बहन है। अरे वाह, तो आपकी आपकी बहन से लड़ाई हुआ करती थी या हमेशा आप ही की साइड लेती थी?
1: नहीं देखिए, मतलब कहते हैं ना बचपन की यादें, वो दोनों तरह से था। मतलब वो कभी कुछ बातों पे हमारी लड़ाई, बॉसी तो कह सकता हूँ मैं थोड़ा लेकिन साथ साथ उनका प्यार भी बहुत झलकता था, तो वो कवर अप भी बहुत अच्छा करती थी, या मम्मी वापस से हमें बचाती थी, हमारी शरारतों को छुपाती थी। तो मैं अभी कुछ और रिवील नहीं करना चाहता।
0: देखिए वही मैं बोल रही हूँ ना कि अगर बड़ी बहन होती है ना तो वो ज्यादा बॉसी हुआ करती है, तो वो अपने भाई को है ना वही कान खींच कर बोल सकती है ना, डांट थप्पड़ दे सकती है। तो यही ऐसा ही एक अंदाज का गाना मुझे याद आ रहा है, फिल्म आई थी अंधा कानून, उसी का गाना है कि मेरा भैया दीवाना है। तो चलिए सुना देते हैं, इसमें हेमा मालिनी और रजनीकांत जी के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया है, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना हम सुना देते हैं हमारे लिसनर्स को।

0: देखा छोटा भाई होता है तो वो बहन से कितनी मस्ती करता है कि भाई आज का दिन है, हम लोग का स्पेशल दिन है, तो सबसे पहले देखो भाई को तो बहन को गिफ्ट देनी ही होती है।
1: तब आपकी बारी है नेपा जी बताने की कि आपका छोटा भाई है कि बड़ा भाई है।
0: देखिए हम तो तीन बहनें हैं लेकिन भाई मेरा जो है मेरे से छोटा है, बड़ा भी है, लेकिन बड़े भैया ने हमेशा इतना प्यार दिया है कि हम लोग उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। और कभी कभी वही ना पापा जो नहीं है, लेकिन वो पापा की कमी बड़े भैया है, वो कभी हम लोग को खले नहीं देते। और छोटा भाई भी हमेशा बड़े, वो बोलते हैं ना पहाड़ की तरह खड़ा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोले मैं हूं ना आपको। तो वही होते हैं कि देखिए काफी रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि मेरी तरह काफी ऐसे लोग हैं जो जिनकी जो बहनें होती है तो वो तीनों बहनों की भी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि उसमें भी देखिए जैसे आपने कहा कि आपकी बड़ी बहन थी तो वो आपकी साइड लिया करती थी, तो बहनों में भी ऐसा ही हुआ करता है ना।
1: बिल्कुल, ये कहते हैं ना रिश्ते ही ऐसे होते हैं कि इसका इसको बयान करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो हर परिस्थिति में आपके साथ होते हैं। यानी कि अगर डांटने का मौका है, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो डांटने का भी हक रखते हैं, प्यार करने का भी हक रखते हैं जब प्यार का मौका होता है। और कहते हैं ना कि मतलब हर तरीके से उनका हक है। तो वो बहुत वेरिएशन आते हैं, जैसे जो नेक्स्ट सॉन्ग हमारा आ रहा है वो भी कुछ इसी तरीके के रिश्ते को दर्शाता है, बहन भाई के। जो मजबूर मूवी का गाना है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी मगर आंसू नहीं देख सकता,
0: नहीं देख सकता। यही तो बड़ा भाई जो होता है ना उनका प्यार जो झलकता है इस गाने में, हम वो महसूस कर सकते हैं कि फरीदा जलाल जो बैठी हुई है व्हील चेयर पर और अमित जी उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो सुना देते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में गाया हुआ फिल्म मजबूर का ये गाना।

0: Summer can be full on. Pool days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinite 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
1: I feel like pizza.
2: I feel like beer.
3: This does not have to be a paradox.
4: Who are you?
3: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I tried to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
5: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
3: The gold, eh?
6: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
7: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
8: वेलकम बैक टू संगीत माला, जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ, और मेरा साथ दे रहे हैं
9: मनीष।
8: और आज की इस संगीत माला में हम बातें कर रहे हैं सावन के महीने की, और रक्षाबंधन के गाने चला रहे हैं आप लोगों के ही पसंद के। और अगर आपको भी हमें कॉल करना हो तो हमारे स्टूडियो का नंबर है
9: 306-242-5002 पर, और प्लीज़ कॉल कीजिए और तुरंत अपना मैसेज भेजिए, चाहे अपने बहन को या भाई को या किसी को भी जिसको आप देना चाहते हैं, जिस तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कॉल कीजिए और हम आपका सॉन्ग प्ले करेंगे।
8: और मनीष जी, हम लोग अभी बॉलीवुड में बात करें तो फिल्मों में जब बड़े भाई की जो इमेज हम सोचते हैं ना, तो वैसे पहले की फिल्मों में एक बलराज सयानी जी हुआ करते थे, उनको देखकर हमेशा बड़े भैया की ही फीलिंग्स आती है। तो बलराज सयानी जी के नाम लिया तो मुझे यहाँ पर उन्हीं का एक गाना याद आ रहा है, नंदा और बलराज सयानी जी के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया है, और फिल्म का नाम है छोटी बहन।
9: तो और अगर हम कहें रक्षाबंधन की बात हो और ये गाने की बात ना, तो हो ही नहीं सकता कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो ये गाना तो बनता ही है
8: जी। हाँ,

0: इसमें जो
1: बहुत इमोशनल हो गए हैं आप नेपा जी, आई नो आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट, बिल्कुल ये गाने ही जो हमें ले जाते हैं दिलों को जोड़ने वाले, तो बिल्कुल बनता है। और इससे देखो इससे पता भी चलता है कि आप देखो कितने जुड़े हुए हो अपने रिश्तों से, अपने जो भाइयों से, और उससे मतलब कितना मिस करते हो आज भी इतने सालों के बाद। और कहते हैं ना कि रिश्ते तो कभी भी भुलाए नहीं भूलते, चाहे आप कितने भी साल हो जाएं। तो ये
0: पहले तो कितना मुश्किल हुआ करता था ना, कि मुझे याद है हम लोग भी पोस्ट में भेजा करते थे राखी, फिर आया कि कुरियर का ज़माना आ गया कि कुरियर से राखी भेजते हैं, और कभी फिर तो बीच में ऑनलाइन भी हम लोग यहाँ से ही ऑर्डर कर देते थे ना, कि इंडिया में जहाँ पे भी आपका भाई हो तो वहाँ से पूरा गिफ्ट करके उनको दे देते हैं राखी, रक्षाबंधन की दिन वो राखी घर तक पहुँच जाती है। तो आज मुझे लगता है सैटरडे संडे सब लोग इतने बिजी होंगे कि जो भी अपने भाई बहन से दूर होंगे वो हमेशा कॉल पर ज़्यादा फोकस करना और प्लीज़ बात कर लेना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि।
1: और एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आजकल जो वीडियो कॉलिंग जब हो जाती है ना, तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं और दिखा सकते हैं, तो वो भी एक इनडायरेक्ट होता है कि कनेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई आप चाहे इतनी दूर भी बैठे हों तो आप उनका चेहरा देख के ही सही एक प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप राखी बांध रहे हैं, टीका कर रहे हैं, या जो भी मतलब मिठाई खिला रहे हैं, मतलब यू कैन प्रिज्यूम एनीथिंग,
0: तो वो थोड़ा कम हो जाता है। और मैंने जैसे आपको कहा ना कि बलराज सैनी जी को देखकर बड़े भाई की ही फीलिंग आती है, और ऐसा ही एक फिल्म आई थी अनपढ़, और देखिए वो इसमें बड़े भैया बलराज सैनी जी ने माला सिन्हा को, उतनी छोटी बहन बनी है, तो इस फिल्म में बड़े भाई ने अपनी बहन को इतना स्पॉइल करके रखा था कि वो स्कूल में वो जाना नहीं चाहती थी, तो उसको पढ़ाया ही नहीं, बोले नहीं मेरी बहन है वो राजकुमारी जैसी है। तो इसी फिल्म का एक गाना है, मैं वो हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ, कि बलराज सैनी जी के ऊपर और माला सिन्हा जी के ऊपर।

0: तो क्या गाने आप सुनवा रहे हैं आज? तो वाकई में आज इमोशनल होने का दिन है बिलीव, और हर कोई हो भी रहा होगा जरूर। हर भाई अपनी बहन को इस समय याद भी कर रहा होगा अगर आप ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, और हर बहन भी अपने भाई को याद कर रही होगी। तो एक और गाना है जो मूवी आई थी 1962 में, राखी, मूवी का नाम भी राखी था और राखी धागों का त्योहार। तो चलिए वो वाला गाना सुनते हैं, और ये इसमें अशोक कुमार और वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार, उन्होंने काम किया था। तो ये
1: जी हाँ, जब
0: चलाते हैं
1: कोई
0: गाना।
1: राखी हम लोग सेलिब्रेट तभी करते हैं ना, देखिए इतने सारे अच्छे अच्छे गाने होते हैं, तो ये गाना भी सुनवा ही देते हैं। फिल्म का नाम राखी।

राखी धागों का त्यौहार, बस एक जो धागा है वो बांध लिया तो जिंदगी भर के लिए वो रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही हुआ था जब श्री कृष्ण जी को, जब वो कृष्ण, एक हमारे ये महाभारत का एक किस्सा है कि श्री कृष्ण भगवान जब लड़ रहे थे तो उनको हाथ में खून निकलने को आया, तो वहाँ पे द्रौपदी जी भी खड़ी थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के श्री कृष्ण जी की उंगली पर वो पट्टी लगा दी थी। और बस तभी से श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि तुम्हारी मैं रक्षा करूँगा। और हमें सबको पता है कि जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था तब उन्होंने सबको याद किया, और आखिर में उन्होंने श्री कृष्ण जी को याद किया था और श्री कृष्ण जी ने उनके चीर हरण पूरे किए थे। कि यही था कि जो एक रेशम का धागा जो बांध दिया था, वो साड़ी का पल्लू से उनको जो बांध दिया, और देखिए वो बंध गए और उन्होंने हमेशा रक्षा की थी द्रौपदी जी की। तो यही है हमारे भाई बहन में, दोनों एक दूसरे को इतना चाहते होते हैं कि बस वो एक दूसरे के लिए ही सोचते हैं कि कहीं मेरे से मेरा भाई दुखी ना हो, और वो कभी भी कहीं भी कोई भी स्थिति में हो भगवान उसकी रक्षा करे। और हमेशा भाई तो होता ही है बहन की रक्षा करने के लिए। और देखिए मनीष, ऐसे रिश्ते भी होते हैं कि आप किसी से ऐसे मिल जाते हो कि उनको देखकर आपको भाई जैसे फीलिंग्स आ जाती है, या किसी को देखकर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी बहन बनने के लायक ही है, तो वो उनको बोल देते ना कि चलिए राखी पे मैं आ जाऊँगा, आप मुझे राखी बांध देना। तो ऐसे भी रिश्ते कितने गहरे होते हैं जो अपनी लाइफ के एंड तक हम निभाते हैं। और अच्छा लगता है कि देखिए नोक जॉक तो हर रिश्ते में होती ही है, लेकिन ऐसे ही इसलिए ऐसे रिश्ते बीच बीच में जो आते हैं के त्यौहार के, आप सब गिले शिकवे भूल कर हमेशा राखी बंधवा लो या कोई भी फेस्टिवल में इकट्ठे मिल के आप वो एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो अगला जो गाना है, फिल्म आई थी बेईमान, उसी का गाना है ये, राखी बंधन है ऐसा। तो चलिए हमारे लिसनर्स को सुना देते हैं यही गाना।

0: दाई। चलिए क्या बात है, क्या गाना, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। तो ये फैक्ट तो है ही,
1: चंदा कहते हैं ना कि भाई हमेशा चांद ही लगता है,
0: राइट।
1: और छोटा भाई होता तो ऑफ कोर्स चांद ही कह सकते हैं
0: बिल्कुल। और समय भी हमारा बहुत कम रह गया है आज के लिए, तो मन तो कर रहा है कि
1: हमें एक कॉल आया था और उन्होंने कहा कि वो हमारा प्रोग्राम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, उनको राखी के जो भी गाने सुनाने थे वो बोले सब आप चला रहे हो, लेकिन वो एक गाना सुनना चाहते हैं। फिल्म आई थी प्रेम पत्र, बिमल रॉय जी का फिल्म थी, उसी का गाना वे सुनना चाहते हैं। तो सुना देते हैं यही गाना, और गाने के बोल है सावन में ऐसा भी होता है,
0: सावन की रातों में ऐसा भी होता है। बिल्कुल चलिए सुनते हैं।
2: लगता है तूफान आया है, मैं दरवाजा बंद कर देती हूं।
3: नहीं तारा, मुझे ही बाहर ले चलो,
2: इतनी हवा में तुम्हारे बाहर जाना मिला। चलो
3: तारा।
2: हाँ?
3: बचपन में जब भी आंधी आती थी
4: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

0: चलिए थैंक यू. मुझे नाम उनका मालूम है लेकिन मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने अपना नाम रिवील करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन और सुनने के लिए, और आप इतना गाना हमें चुन कर लाते हैं और बताते हैं, तो मैं वाकई में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सॉन्ग की, और वही जो रक्षाबंधन पे हम सॉन्ग चला रहे हैं, तो बहना और बहना
1: और
0: का
1: भाई का
0: सॉन्ग है.
1: आखिरी हमेशा बहन के बारे में भैया को एक ही फिक्र होती है कि उसकी जल्दी से शादी कर दे, राइट? तो वो भाई का जो प्यार है वो ही हमेशा सोचते हैं कि भाई उसको अच्छे से अच्छा घर मिल ले और उसमें वो अपने परिवार के साथ वहाँ सुखी रहे। तो देखिए भाई बहन का रिश्ता ही कुछ इतना नाजुक होता है और इतना प्यारा होता है। और आपकी तरह मैं अभी बोलूँ तो आपको ये जो आखिरी की मिनट से होती है वो आपको पसंद नहीं होती है। आप
0: बिल्कुल, अलविदा मुझसे लिया नहीं जाता लेकिन हमें तो कहना ही पड़ेगा. आज के लिए अलविदा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अवर संगीत माला ओनली ऑन 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर, जो कि आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं ICCA के सौजन्य से, यानी इंडिया कनाडा कल्चर एसोसिएशन. और नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया. शुभ खैर.
1: और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी
0: हैप्पी
1: रक्षाबंधन।
0: रक्षाबंधन.
1: टेक केयर।